हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। सुबह के 5:57 और 3 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे। अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुबह के 6 बजे आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव डेविड कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार

रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चंदनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबली का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। 3 बजे सुनेगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। 5:00 सुनेगा छाया गीत। 5:30

मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तरानी नई पुरानी। छह बजकर 35 मिनट पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई। लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात की कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

अभी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसके उपरांत राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुबह 7 बजे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आप सुनते हैं हरियाणवी गीत, प्रसारित होगा सुबह 7:10 पर। सुप्रभात सुबह 7:40 पर प्रसारित होगा, जिसके उपरांत समाचार प्रभात सुबह 8 बजे और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9 बजे आप सुनेंगे, जो कि हम विविध भारती से रिले करेंगे, जिसके उपरांत हमारी दैनिक प्रस्तुति नमस्ते हिसार सुबह 10 बजे।

विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल आपके लिए लेकर आएंगे हम दिन में 12 बजे 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: दिन में 2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: सितारों की
2: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
0: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
0: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist said Thomas Alva Edison।
1: कोई कला में उत्कृष्ट है?
0: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
0: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी हिसार पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रूपरेखा। बाद दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती से, जिसके उपरांत शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो हिसार सुनेगा आज शाम 5 बजे। श्रोताओं को याद दिला दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी आज दिन में 11 बजे।

शाम 6 बजे का हिंदी में समाचार होंगे। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा शाम 6:20 पर, जिसके उपरांत 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग, जिसमें आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

कार्यक्रम खेती किसाना सेती का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 7 बजे, 7:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारे गांव। आज बातचीत का विषय रहेगा वैश्विक संकट और हमारी जिम्मेदारी।

पंजाबी लोक संगीत का मजा लीजिए आज रात्रि 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश में सुनिएगा संगीत एक फिल्म से।

समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 9 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 से आप सुन पाएंगे विविध भारती के प्रसारण।

और सभा के अंत में रात्रि 10 बजे सुनेगा कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 10 बजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। सुबह के 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी एसआर कार्यक्रम लोक रंग आजाद बाई के साथ। आज 5 जून और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम हर साल मनाया कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को पर्यावरण के महत्व से परिचित करा के इसके संरक्षण का प्रयास करना है। जाने अनजाने में जो हमने भूल की, गलती की, पेड़ों की कटाई की, अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग किया, जिसका परिणाम आज हम भुगतन लाग रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि साधन संसाधनों का समुचित प्रयोग करके आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करेंगे तो हमारे साधन संसाधन बचे रहेंगे।

आज प्रकृति के साथ जो हमने जाने अनजाने में गलती करी उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज जल और वायु के संतुलन में कमी आई है। विकास की अंधी दौड़ में या भूल मारत होगी, हमने अपने पैरों के कुआड़ी मार ली। आज के जमाने में प्रकृति की सुंदरता को समाप्त करके विकास की रास्ते खोजने हम शुरू कर रहे हैं। पुराने टाइम में हम सब प्रकृति पर आश्रित थे। सामाजिक धार्मिक कार्यों की वजह से हम प्रकृति की पूजा कराया करें, पेड़ों को देवता स्वरूप माना जा। कुदरत आदमी के लिए वरदान है। प्रकृति ने सारे संसाधन हमें निःशुल्क प्रदान करे। हम अपने लालच और लोभ के लिए कुदरत के दिए संसाधनों को इस कदर इस्तेमाल करने लग गए जिससे प्रकृति का संतुलन डगमगाता जा रहा है। कुदरती वो चीज है जो जल वायु पेड़ पौधे पर्वत वन्य सब मिलके वातावरण को सुंदर बनावे। रंग बिरंगे फूलों से लदी वादियां, कलकल करती नदियां और झरनों का नजारा सब ने सुथरा लाग गए। अपने तन मन और मस्तिष्क के तनाव को दूर करने के लिए ये प्रकृति हमें अपनी गोदी में रखे।

कुदरत का नजारा बहुत लंबा चौड़ा है। पंच तत्व जल वायु अग्नि आकाश जल मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं। आदमी तो एक छोटा सा अंश है। आदमी जब इन पंच तत्वों के साथ अच्छा समायोजन करेगा, जब भी उसका जीवन सुखी होगा।

आज के टाइम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषण का भयानक रूप आज हम देखने लाग रहे हैं। कटते जंगल और घटते मंगल को एक ज्वलंत समस्या मान के हर आदमी ने पेड़ पौधे लाने चाहिए। आज के टाइम सरकार, सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्थाएं पेड़ों की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का अभियान चला रही है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जैसे ऐसे आंदोलन हुए जिससे हमारे पेड़ों का संरक्षण हुआ। राजस्थान में बिश्नोई समाज ने पेड़ों की कटाई के विरोध में बलिदान दिए।

आज के टाइम में जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। लोगों को मकान बनाने के लिए इमारती लकड़ी, फर्नीचर, उद्योग धंधों के लिए हम पेड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाले, पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले प्राकृतिक साधनों में हरियाली, वृक्षावली, पेड़ों का बहुत महत्व है। अशुद्ध वायु को शुद्ध करके स्वास्थ्य के अनुकूल बनावे है हमारे पेड़। पेड़ों के आकर्षण से बादल जल बरसावे जिससे धरती उपजाऊ बन जा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या खड़ी है। आइए प्रण लें, हर व्यक्ति पेड़ लगावे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो पेड़ पौधे लगाए थे, जिनके फल और छाया आज हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर आज हम पेड़ पौधे लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियां फल और छाया प्राप्त कर सकेंगी और अपने स्वर्णिम इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। किसी भी आयोजन, जन्मदिन, कोई भी बार त्योहार का मौका हो, पेड़ लगावे, जीवन बचावे, जिससे हमारी धरती हरी भरी हो, हमारा प्राकृतिक वातावरण साफ सुथरा हो। कार्यक्रम आपने किसक लग गया, इस बारे में ठोस टीक प्रतिक्रियाएं इस पते पर जरूर लिखा करें। कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 1250001। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दे अनुमति। सारे बन भैया ने राम राम।

0: नया बेहतर है
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज़ क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है,
4: चकरका चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
0: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
5: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात में शुरुआत करते हैं आज के मौसम के साथ। यदि हिसार में आज के मौसम की बात करें तो तापमान अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हो चुका है, जबकि सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:23। नमी का स्तर 29% और वायुमंडलीय दबाव 1000 से ऊपर के स्तर पर है। आने वाले 7 दिनों में तापमान अधिकतम 42 से 47 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और यदि हम बात करें आज के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की, तो ये स्तर आज का है 145 डिग्री, जो कि काफी बुरे यानी पुअर श्रेणी में आता है। यहाँ PM 2.5 का स्तर 145 डिग्री, जबकि PM 10 का स्तर 64 पर है। एयर क्वालिटी का स्तर यह निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है कि बाहर निकलते वक्त हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, तो यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और यदि आपको लगता है कि आपको सांस की कुछ भी समस्या है तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें।

एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। अब वक्त है आज के श्लोक का। नसा दीक्षा नसा भिक्षा न तत् दानम न तत् तपः न तत् ध्यानम न तत् मौनम दयायत्र न विद्यते। अर्थात उस दीक्षा का भिक्षा का दान तप ध्यान और मौन का कोई अर्थ ही नहीं है जब तक कि करुणा या दया न हो। जी हाँ, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत दान करते हैं और बहुत ध्यान करते हैं, हमेशा उनके हाथ में माला रहती है, परंतु उनके हिस्से में न करुणा होती है न दया होती है। यानी वो जीव पर या किसी भी मनुष्य पर दया नहीं कर पाते, और जहां पर दया और करुणा नहीं होगी वहां पर किसी भी तरह का दीक्षा भिक्षा दान तप ध्यान और मौन ये सब व्यर्थ है।

और अब वक्त है आज की एक कहावत का। दोस्तों कहावत पुरानी है लेकिन हमेशा के लिए प्रासंगिक है, चाहे वक्त पुराना हो या नया। ये कहावत मुझे लगता है कि हमेशा प्रासंगिक थी, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगी। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन उसके बावजूद हम इसे समझ नहीं पाते। अगर समझ जाएं तो समझना नहीं चाहते। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कर्म करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। और प्रकृति ने इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है। सोचिए, यदि हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पर आम कहां से पैदा होंगे? यदि हमने कैक्टस लगाया है तो उस पर घिया कहां से लगेगी? यही गलती हम करते हैं जब हम कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कर्म वहीं पर खत्म हो जाएंगे जब हम उन्हें करना छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए कि कर्म आपका पीछा हमेशा करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो बोया है आपको काटना वही पड़ेगा।

और अब वक्त है आज के प्रेरक प्रसंग का। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसको हमेशा लगता था कि वो बड़ा हो गया है, अब वो खुद बाहर निकलना चाहता है, खुद कहीं जाना चाहता है, खुद सारे काम करना चाहता है। और ये वो उम्र थी जब हमेशा उस बच्चे को अपना पिता एक दुश्मन जैसा लगता, क्योंकि पिता चाहता कि वो उसकी बताई दिशा पर जाए, वो उसके निर्देशों पर काम करे। फिर एक दिन उस बच्चे को अपने मामा के यहाँ जाना था। बच्चे ने बहुत जिद की कि मैं अकेला जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, पापा मुझे छोड़कर नहीं आएंगे। उसके पापा ने भी उसकी जिद को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, तुम अकेले जाओ, लेकिन ये एक पत्र है, जब तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में घिर गए हो तब इस पत्र को खोल लेना। बच्चे ने खुशी खुशी सहर्ष वो पत्र अपनी जेब में रखा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी, सफर साई रात का था। जैसे जैसे रात घनी हुई, बच्चे को डर लगने लगा, लेकिन उसे लगा नहीं नहीं डर की क्या बात है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जा सकता हूं। एक वक्त ऐसा आया जब उस रात उस ट्रेन के डब्बे में कोई नहीं बचा और एक आदमी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो उसे पकड़कर उसे गुमराह कर देगा या उसे ले जाएगा। बच्चा बहुत डर गया। जब बहुत डर गया तो उसे याद आया पिता ने कहा था कि यदि फंस जाओ, मुसीबत में उलझ जाओ, घिर जाओ, तो इस पत्र को खोलना। उसने झटपट से वो पत्र खोला और उस पत्र में लिखा था, चिंता मत करो, मैं पिछले डब्बे में बैठा हूं। जी हां, अक्सर ऐसा ही होता है।

जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके सिर पर साया होता है उनके पिता का, उनके बड़ों का। आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सुबह के 8 बजने को है। आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है।

0: 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने

0: भारत को पांचवी पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीनी सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है। किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है। सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण कमले।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पात

का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्रीराम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग बंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: बाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे मातरम।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु यह सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाए।

शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।

इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: आरटी चार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहू लुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठीचार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
3: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृति नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आइए अब सुने देश गान।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जी, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर आप सभी श्रोताओं का पूजा नारायण का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम चित्रलोक में। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

कुछ कुछ होता है इस मूवी के सॉन्ग से हमने शुरुआत करी कार्यक्रम चित्रलोक की। उदित नारायण अकायाग में कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी, समीर के बोल जतिन ललित का संगीत। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम भी देखिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझना और उनकी समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करना, यानी सामूहिक रूप से कुछ कार्य करना और समझना। वर्ष 2026 के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या थीम थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना था और इस ओर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के

कुछ हमारे कर्तव्य जो होते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, हम जानते हैं ना। बिजली और पानी की बचत भी करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, ऊर्जा की बचत करनी होगी, कचरे को अलग अलग करके रिसाइकल करना होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा, भोजन की बर्बादी को रोकना होगा, कागज का उपयोग कम करना होगा। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कागज की बचत होने ही वाली है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये हमारे योगदान के लिए बहुत जरूरी है। स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अपनाने की जरूरत है। दूसरों को भी पर्यावरण और संरक्षण के लिए जागरूक करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी दैनिक जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा भरा वातावरण बना सकेंगे।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं मिशन मजनू फिल्म का ये गीत, शब्बीर अहमद की लिखी बोल, तनिष्क बागची का संगीत, जुबीन नौटियाल की आवाज़।

श्रोताओं, अभी जेठ का दशहरा यानी गंगा दशहरा मनाया गया ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, जिसे मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं, या फिर जो नहीं जा पाते हैं वो घर पर ही गंगा जल रखते हैं और उसी को पानी में मिलाकर और उसी से स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन जो स्नान होता है उसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस अवसर पर दशविध स्नान का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसमें शरीर से किए गए 3 प्रकार के पाप, वाणी से जुड़े 4 प्रकार के पाप और मन से किए गए 3 प्रकार के पाप शामिल माने जाते हैं। इस तरह गंगा दशहरा का स्नान आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है।

गंगा दशहरा की बात हो रही थी, इसलिए चंद्रानी मुखर्जी और साथियों के स्वर में गंगा माँ पर आधारित ये सॉन्ग हमने आपको सुनवाया है और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत बेवफा फिल्म से। उदित नारायण की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और चित्रलोक में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में समीर का लिखा और नदीम श्रवण के बनाई धुन पर ये गीत। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं, आज है अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग डे। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहला IUU दिवस 5 जून 2018 को मनाया गया था। इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी और पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट PSMA। यह दिवस PSMA की भी वर्षगांठ का प्रतीक है, जो अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है ना, अवैध मछली पकड़ने और इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान से दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, बढ़ाना है।

फिशिंग से महासागरों में जैव विविधता, समुद्री संसाधनों और मछुआरों की आजीविका को भी भारी खतरा होता है श्रोताओं, जो कि नियमों का पालन करते हैं।

अमिताभ भट्टाचार्य की बोल प्रीतम की बनाई धुन पर अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनाने जा रहे हैं समीर का लिखा गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में मुझे कुछ कहना है फिल्म से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

श्रोताओं, अंतराल की बात कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज 4 बजे शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। वाचन स्वर नेहा शर्मा का है, संपादन सहायक काजल भतरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। समी ने इसे लिखा है, अनु मलिक ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहीं आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में, इब्राहिम अश्क की शब्द रचना है, राजेश रोशन की बनाई तर्ज।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आप मुझे अच्छे लगने लगे अलका याग्निक और अभिजीत की युगल आवाजों में। और अब आपको कार्यक्रम ऋतुलोक का आखिरी गीत सुनवाने जा रहे हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल सोना मोहपात्रा की आवाजें कुमार का लिखा गीत विशाल शेखर का संगीत। इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात को पुनः 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। सुनना नहीं भूलिएगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी। तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म

बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फिल्म को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

से अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

के बाद आई खूबसूरत एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

कराई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

रीजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती।

इसके बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

0: कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।
1: फर्राटे वाला फैन, फर्राटे मारे मैन, उड़ जा रे प्यारे जा।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रही और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म मिर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सांवरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। दोस्तों आज है 5 जून और 5 जून को क्या होता है? 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है ये दिवस? ये जानने की वाकई हमें सख्त जरूरत है और इसको मनाने की भी सख्त जरूरत है। ये क्यों मनाया जाता है इस बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है लोगों में, इंसानों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये एक वैश्विक कार्यक्रम है, ये सिर्फ हमारे राज्य हमारे देश का नहीं बल्कि एक विश्व स्तर पर किया जाने वाला आयोजन है। और इस दिन हम बात करते हैं इस विषय पर कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसको कैसे बचाया जाए, उस पर जो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसे कैसे कम किया जाए, इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो आज का हमारा ये शो भी समर्पित है इसी दिन को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस को। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, सवाल भी होंगे इसी बारे में और गाने भी होंगे इसी विषय पर। तो आइए पहला गीत सुनते हैं जिसमें बहुत ही खूबसूरती से बखान किया गया है प्रकृति की सुंदरता का। वापस आकर के हिसार के आसपास की खबरें और आज के सवाल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्स पर। और आज बात करते हैं हिसार आसपास में, हिसार में बढ़ते वन क्षेत्र की। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है कि हिसार में, हिसार शहर में जो वन क्षेत्र है वो हो गया है 4.22%, जबकि यदि हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में इससे कम है, लेकिन हिसार के अंदर ये 4.22% हो गया है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है पिछले 4 वर्षों में हिसार शहर में वन क्षेत्र में करीब 32 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ये एक अच्छी खबर है हिसार वालों के लिए। अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। जैसा कि मैंने बताया कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस और वर्ष है 2026, तो सवाल बहुत ही आसान है कि 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। मैं एक बार फिर से सवाल रिपीट करता हूं कि 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। उठाइए फोन और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272, यानी 9792523272। बताइए मुझे क्या है जवाब आपका। जो सबसे पहले हमें भेजेगा जवाब उसका नाम तो हम पढ़ेंगे ही उसके जवाब के साथ, साथ ही उसका जो पसंदीदा गाना है वो भी हम प्ले करेंगे आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। मैं हूं आनंद और हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस की, और इसी लय में आज एक और खबर मैं सामने पढ़ रहा हूं कि स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के दिशा में नगर निगम का एक विशेष स्वच्छता अभियान आज चलाया गया है। वार्ड नंबर 1 में मेयर ने झाड़ू थामी है और जो वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी उनका सहयोग दिया, और ये इस बात का द्योतक है कि हमें भी कम से कम अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सहयोग हो सकता है पर्यावरण को शुद्ध रखने में, पर्यावरण को अच्छा रखने में। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी एक आहुति हो सकती है इस बड़े यज्ञ में कि हम कम से कम इतना तो करें कि अपने घर के आसपास को साफ रखें। अभी बरसात शुरू होने वाली है तो आप एक पौधा जो है वो लगा सकते हैं। इस बारे में तो आज हम बात करेंगे ही। हमारे साथ दो बहुत ही खास गेस्ट होंगे हिसार से ही, जिन्होंने कमाल किया हुआ है इस क्षेत्र में, पौधारोपण में, और बहुत सारे काम कर रहे हैं वो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भी और पर्यावरण को बचाने के लिए भी। लेकिन अभी हम दोबारा वापस आते हैं अपने सवाल पर। मेरा सवाल है आज का आपसे कि वो थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस का 2026 का, और दूसरा सवाल यह है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इस थीम का। उठाइए फोन, मुझे जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों के जवाब मुझ तक पहुंच रहे हैं। 9729253272 यानी 9792253272। आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will he be remembered as a great scientist, say La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और आज मैंने आपसे सवाल पूछा था नंबर एक, ये कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या है, और दूसरा ये कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुझ तक जवाब पहुंचा वो पहुंचा गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा राजवाला कार्तिक और वेदांश का। बहुत बहुत बधाई आपको। और इन्होंने गाना सुनना चाहा था फिल्म मधुमती का, लेकिन वो गाना तो हम पहले ही प्ले कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इनकी पसंद का और गाना बजाएंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजे हैं, जैसे कि ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा ने हमें सही जवाब भेजा है। अगला जो सही जवाब हम तक पहुंचा है वो पहुंचा है हमारे पास गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, शमशेर भयान, सुरेंद्र भयान, मनोज भयान है भेजने वाले। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने हमें सही जवाब भेजा है। अगला सही जवाब हम तक पहुंचा है ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने भेजा है सही जवाब। इसके अलावा हमारे पास सही जवाब पहुंचा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन इनके व्हाट्सएप पर मुकेश लिखा हुआ है, तो मुकेश जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंटू शर्मा गांव शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भी हमें सही जवाब प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में वापस आएंगे तो बात करेंगे हरी भरी वसुंधरा

नाम की एक एनजीओ है, उनकी संस्थापक हैं सुनीता रहेजा जी। उनसे बात करेंगे कि वो कैसे अपना काम कर रही हैं और क्या कुछ अभी तक कर चुकी हैं इस क्षेत्र में। लेकिन अभी आइए सुनते हैं ये गीत।

स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। और मैंने विजेताओं के नाम तो बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि सही जवाब क्या है। जी, आपसे बातें करने के चक्कर में भूल गया कि सही जवाब भी मुझे बताने हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु पर कार्यवाही। और इसका प्रमुख उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल कदम उठाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। दोस्तों, हमारे अब साथ जुड़ गई हैं सुनीता रहेजा जी। और जैसा कि मैंने कहा था, ये हरी भरी वसुंधरा नामक एनजीओ की संस्थापक हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सुनीता जी। जानना मैं ये चाहूँगा कि कैसे प्रेरणा मिली आपको इस काम को शुरू करने की।

0: क्योंकि हम चारों तरफ देखते थे कि गंदगी है, और पर्यावरण जो है पूरी तरह से लोग समझ नहीं पा रहे कहाँ कचरा फेंकना है और कहाँ सफाई रखनी है। ग्रीन बेल्ट्स को भी डस्टबिन बना दिया गया था, तो पर्यावरण के ऊपर कार्य करने की सोची, क्योंकि हमें लगा कि इस पर कार्य करने की बहुत जरूरत है। वैसे देखा जाए तो ये गंदगी हमारी ही फैलाई हुई थी, हमारी पीढ़ी ने बहुत नुकसान किया, तो हमें ही इसको संवारना भी है, आने वाली पीढ़ियों को सपोर्ट करना है, तो हमें पर्यावरण पर कार्य करने की जरूरत महसूस हुई। और हम चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को, जैसे हमने शुद्ध पानी का आनंद लिया है, अच्छी हवा, और केमिकल से मतलब हमने जो भोजन खाया वो केमिकल वाला नहीं था, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं जब वो काम करते हैं इतनी एनर्जी से, तो हम उनको कहते हैं कि आपने तो बिना केमिकल वाला खाया हुआ है, आपने तो देसी घी खाए हुए हैं, बढ़िया। तो इस तरह जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको हम क्या दे रहे हैं, सब कुछ प्रदूषित दे रहे हैं। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मिट्टी पानी और हवा, वो भी अगर प्रदूषित लेंगे तो क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसीलिए हमारा यही उद्देश्य था कि हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को शुद्ध मिट्टी पानी और हवा दें, ताकि वो अच्छी हवा में सांस लें और केमिकल वाला अनाज ना खाएं और पानी भी शुद्ध पिएं। जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो शुद्ध होनी चाहिए।
1: बहुत ही सही बात कही आपने कि बेसिक नीड तो कम से कम शुद्ध होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है आपका, नोबल कॉज का आप काम कर रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक का सफर कैसा रहा आपका, और साथ ही क्या कुछ नया कर रही हैं आप, क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं हरी भरी वसुंधरा ये जो NGO आप रन कर रही हैं इसके तहत।
0: आपको बताना बिल्कुल, हम 25,000 के अराउंड हम पेड़ लगा चुके हैं, जिसमें मियावाकी जंगल भी है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई हमारे को, तो उन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने में हम लग गए। जैसे पत्तों को जलाने से लोग प्रदूषण करते थे, तो पत्तों की खाद बनानी शुरू कर दी। फिर देखा डिस्पोजेबल बहुत यूज हो रहे हैं, तो इस पर काम शुरू कर दिया और बर्तन बैंक बनाए। आजकल हम बर्तन बैंक पे हमारा फोकस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, क्योंकि पहले हम वेस्ट को जनरेट करते हैं और फिर हम उसको मैनेज करने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन काम इसी पे किया जाए कि वेस्ट को जनरेट ही ना किया जाए।

0: तो इसलिए हम बर्तन बैंक बना रहे हैं। अब हमारी मुहिम चल रही है गांव गांव बर्तन बैंक, तो हमने 2-3 गांव में बर्तन बैंक बना दिए हैं। जैसे हमने एक नंगथला में बनाया और एक हांसी के थुराना गांव में बनाया, जो बहुत सक्सेसफुली वहां बर्तनों की डिलीवरीज हो रही हैं। और इस तरह एक हम एनवायरमेंट डे वाले दिन कल 15 सेक्टर में भी एक बर्तन बैंक बनाने जा रहे हैं। कृष्णा नगर में भी एक बर्तन बैंक है, रिवाड़ी में भी है। इस तरह काफी सारे बर्तन बैंक, हम 7 बर्तन बैंक बना चुके हैं और आगे भी हम, यही हमारी एक अचीवमेंट है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं कि हाँ हमें बर्तन बैंक बनाना है। तो ये हमें अच्छा लग रहा है ये वाला काम करके। इसके अलावा मंदिरों के वेस्ट को भी हमने मैनेज किया है। अब जैसे नगर निगम और अपनी जो विधायिका है श्रीमती स्मृति जिंदल जी, उन्हीं के सहयोग से मंदिरों में जो है 20 मंदिरों में कंटेनर रखवाए गए हैं अलग अलग सामान डालने के लिए, और वो सभी 20 मंदिरों का जो वेस्ट है वो हरी भरी वसुंधरा में आता है, जिसको सेग्रीगेट किया जाता है और उसे अलग अलग तरीके से निस्तारण किया जाता है। और उससे क्या है, कई जो लेडीज हैं उनको रोजगार भी मिला हुआ है। वो थैले भी सीती हैं, उन्हीं कपड़ों से पाउच बनाती हैं, थैलियां बनाई जाती हैं और भी कई वॉल हैंगिंग वगैरह बनाए जाते हैं जिनका स्टॉल लगाया जाता है। तो इस तरह हमारा काम चलता है। और कुछ हम जो कपड़े हैं वो संस्थाओं को भेजते हैं, आगे गुण संस्था को भेजते हैं। पुराने कपड़े भी यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं। मैंने कहा पहले भी कि जो जो चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हीं चीजों पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे कि ग्रीन बेल्ट्स में कपड़े पड़े हुए हैं, काफी सारे जो झुग्गी वाले फेंक देते हैं, तो उन कपड़ों को भी हम लोग अपने पास लाते हैं और उन कपड़ों को हम साफ सुथरा करके और फिर गुण संस्था में दिल्ली सरिता विहार में उनको भेजा जाता है। तो हमारे इन काम अचीवमेंट्स आपने पूछी, तो हम अचीवमेंट्स 2022 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पंचकुला से हमें 1 लाख रुपए का इनाम मिला और समय समय पर सम्मानित किया जाता है। लेकिन हमें चाहिए, हम सम्मान नहीं चाहते, हम सहयोग चाहते हैं लोगों का। हमें यही अच्छा लगता है कि हमें लोग समझें और सहयोग करें हमारा इन कामों में।
1: बहुत ही सही बात की आपने कि लोग सहयोग करें। आप तो इतना कुछ कर रही हैं इस वसुंधरा के लिए, धरती के लिए, लोगों से क्या उम्मीद है आपको, लोग क्या करें?
0: जी बिल्कुल, क्या है कि हम जो काम हम कर रहे हैं, हमारे लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोग भी समझें इस चीज को कि प्रदूषण आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे वो किसी तरह का भी है, आने वाली जनरेशन्स के लिए वो लाभकारी नहीं रहेगा। है ही प्रदूषण तो लाभकारी कैसे हो सकता है। और ये जो हम मिट्टी पानी और हवा को खराब किए जा रहे हैं, जिन हमारी आदतों की वजह से ये सब बिगड़ा है, तो हमें अपनी आदतें सुधारनी होंगी। जैसे मैं अपेक्षा करूंगी कि वो पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें लोग, और थैला उठा के चलें, जो भी चीज उन्होंने लानी है थैला उठाएं, डिस्पोजेबल का सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, और बहुत जरूरी हो तभी करें इन चीजों का इस्तेमाल। और पानी को भी, पानी हमारे लिए प्रीशियस है, तो पानी को ना तो प्रदूषित करें ना ही इसको वेस्ट करें। और हरी हरियाली है, जो जैसे सिविक सेंस होनी बहुत जरूरी है आजकल की जनरेशन में। वो कचरा गाड़ी चलाते हैं तो इधर उधर गाड़ी में से ही फेंक देते हैं। अब जैसे स्ट्राइक रही है कुछ टाइम, तो लोगों ने 1 हफ्ते में ही पूरा नर्क बना दिया था अपने आसपास को। तो लोगों में ये सिविक सेंस होनी चाहिए कि वो गीले कचरे का खाद बनाएं और सूखे कचरे को कबाड़ी को दें बेचने के लिए, और अपने घरों को जीरो वेस्ट घर बनाएं, ताकि हम कचरे के पहाड़ ना बनाएं। जगह जगह पे कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाला है।

तो मैं यही चाहूंगी कि आने वाले जो जनरेशन है, यंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, सबको इस बात को समझना होगा कि पर्यावरण हमारा साफ रहे और हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इन चीजों का पूरा ध्यान रखें।

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज।
1: हेलो,
0: आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन?
1: जी हाँ,
0: हेलो हिसार, आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662297827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन। रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5:00। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10:00। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार।

0: दोस्तों, ग्रीन हिसार ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। यदि आप हिसार में रहते हैं तो बहुत से इन्होंने पेड़ लगाए हैं, बहुत सी गंदगी को साफ किया है और अपना बर्तन बैंक चलाते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं दिलबाग जी। तो आइए दिलबाग जी जानते हैं कि कौन कौन है उनकी टीम में, कैसे वो काम करते हैं, रोजाना किस तरह से वो पहुंचते हैं, पौधे लगाते हैं, क्या प्रेरणा मिली उनको ये काम करने की और क्या अचीवमेंट रही, क्या उनको उम्मीद है लोगों से। स्वागत है आपका दिलबाग जी। सबसे पहले तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आनंद जी, सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और आपने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बात करने के लिए मुझे चुना, उसके लिए एक बार फिर हमारी टीम ग्रीन हिसार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले करीब 9 साल से हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। खाली पर्यावरण के लिए नहीं, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं और बर्तन बैंक भी हम चला रहे हैं, जिससे लोगों को प्लास्टिक, पॉलिथीन, थर्मोकोल का उपयोग ना करना पड़े। अपने घर में कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए हम बर्तन खरीद देते हैं और आगे उम्मीद है कि लोगों को बर्तन बैंक के थ्रू ज्यादा से ज्यादा और जागरूक करें। मैं एक बार अपनी टीम के सदस्यों का और परिचय कराना चाहूंगा आपको। हमारी टीम में करीब 15 लोग एक्टिव हैं, जो सुबह 2 से 3 घंटा हर रोज सर्दी गर्मी बारिश में अपना कीमती समय देते हैं, जिनमें सबसे सीनियर साथी जय भगवान शर्मा जी, सत्यनारायण वर्मा जी, सोनी नंदा जी, रतन सिंह जांगड़ा जी, एडवोकेट कुलदीप कोचर जी, ज्ञानेश मिश्रा जी, जितेंद्र पाल जी, रमेश जी, ये आदि सदस्य हैं जो हर रोज 365 दिन पर्यावरण के लिए काम करते हैं। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि अभी तक कितने पौधे आपने लगाए, तो आनंद जी मैं एक बार बताना चाहूंगा, हमें पौधे करीब 500-600 ही मिल पाते हैं, लेकिन और जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले साथी संस्थाएं, वो मिलाकर 1000-1200 के पौधे में मिलते हैं और ये सारे हम लगा देते हैं। अभी तक हम 9000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। और रही बात, अब आपने तीसरा सवाल पूछा है कि अब आगे का टारगेट क्या है, तो टारगेट की बात करूं, हर साल कम से कम 1500 से 2000 पौधे लगाना और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना, उन्हें पेड़ बनाना, ये हमारा टारगेट है। और सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हमारी ग्रीन बेल्ट आप जहां भी देखेंगे वो आपको बिल्कुल साफ सुथरे मिलेंगी और

एरिया, जिस एरिया में हम काम करते हैं, तो पौधे लगाते नहीं है, खाली भाई उनको लगा दिया। हम मतलब सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। अगर कभी आप मेल गेट से एयरपोर्ट रोड, मेल गेट से सेक्टर 1-4 प्लांटेशन देखेंगे या सेक्टर 1-4 में देखेंगे, तो सफाई देखकर आप दंग रह जाएंगे, इतना साफ सुथरा अपने एरिया को रखते हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपने पूछा कि क्या प्रोग्राम है, तो आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, और पिछले करीब 1 हफ्ते से हम पौधे लगा रहे हैं। कौन से पौधे? कनेर के ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा आई है। लेकिन कनेर का एक ऐसा पौधा है जो मतलब गर्मियों में भी चल जाता है, और आज भी ज्यादातर हम कनेर के पौधे लगा रहे हैं, और कुल मिलाकर इसी हफ्ते तक हम 250 पौधे, आज हमारा टारगेट पूरा हो गया, जिसमें कनेर के ही ज्यादा हैं। और लोगों से क्या उम्मीद? आपने एक और सवाल पूछा है, अभी हम क्या उम्मीद करते हैं लोगों से? तो लोगों से तो यही उम्मीद करते हैं कि अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखें, सफाई रखें, पौधे लगाएं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करें। खाली एक सेल्फी लेने के लिए पौधा ना लगाएं, अपनी जिम्मेवारी भी समझे। और मैं तो यूं कहूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति 5 पौधे 1 साल में अवश्य लगाए, और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे। आपके घर में कोई भी खुशी का अवसर हो या कोई पुण्यतिथि हो, उन अवसरों पर पौधे अवश्य लगाए, ताकि आपका जो जन्मदिन है, खुशी है, वो डबल हो जाएगी और एक यादगार हो जाएगी, और पर्यावरण के लिए भी हम काफी ज्यादा कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी नर्सरी भी है, जिसमें हम पौधे तैयार करते हैं। और अगला जो हमारा मिशन है, इस नर्सरी में हम अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहते हैं, तैयार करना, क्योंकि तो जो हमारी सरकारी नर्सरी है, उससे हमें कम पौधे मिल पाते हैं, और हमारी डिमांड है बहुत ज्यादा। और 250-300 पौधे तो हम लोगों को बांट भी देते हैं, ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। इसके अलावा तुलसी के पौधे पूरे साल बिल्कुल फ्री हम देते हैं, और आसपास के एरिया में बिजवाने का भी कार्य करते हैं। तो आनंद जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है, आपको ले चलते हैं विविध भारती।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथ जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है पूर है, हाथ को बुत और बुत को देवता करता।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: At 5.25%.
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक

0: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उदयमी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

युद्ध तीन झरनों का ये शोर बह झर झर पानी।

दिल कह

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक्मन के दरारों को छेड़ गई, जलते अंगारों को छेड़ गई, रुक्मन के दरारों

0: अरे सुनो।
1: हाँ?
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा,
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ! आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो?
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे सखी सहेली।

छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

बामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली है क्या? तो चलिए हम वो इबारत पढ़ते थे कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों से दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती, प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आंच छलक पड़ती, बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत, हवा उसके जुल्फों को सहला कर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसके जुल्फे पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतर कर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी, नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से। उसके दिल में अजब सा संसार था, एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, जिसकी हंसी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई, बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाए कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है।
1: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ। लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व

0: इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के निर्माण का जिम्मा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस अत्याधुनिक और भव्य अस्पताल का निर्माण गुरुग्राम की पुलिस लाइन के समीप किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी और विशाल स्वास्थ्य परियोजना पर लगभग 1054 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम पूरे भवन के निर्माण कार्य की देखरेख करेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अस्पताल निर्माण के संबंध में अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे को 2 अलग-अलग चरणों में तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में इस अस्पताल को 400 बेड की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय मरीजों को तुरंत आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सके। इसके बाद अगले चरण में अस्पताल की क्षमता 600 बेड करने के लिए अतिरिक्त संरचना का निर्माण किया जाएगा। जींद पुलिस ने सफीदों क्षेत्र में 25 मई को हुई रंगदारी मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक ऋषभ सोढ़ी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी तपन के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे आरोपी गोवर्धन को मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने तपन के कब्जे से 1 अवैध पिस्तौल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने उनकी कार को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपियों द्वारा की गई वारदात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
2: 25 मई को पानीपत सफीदों रोड पर 6-7 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर बादल सानी ढाबा के जो मालिक के साथ मारपीट करी थी और ढाबे में तोड़फोड़ करी थी, और इसके अलावा उन्होंने उनसे 10,000 रुपए मंथली भी मांगी थी, और इसके कंटेक्स्ट में एक FIR थाना सफीदों में 79 नंबर जो है वो दर्ज करी गई थी।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 12 फुट चौड़ाई की सभी सड़कों को अगले वर्ष मार्च तक 18 फुट चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में और समुचित चौड़ाई का होना आवश्यक है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि बनाई जा रही सड़कों की अच्छी गुणवत्ता, साइन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को गुजरात में श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए 8 जून को कुरुक्षेत्र से एक विशेष रेल रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इच्छुक और पात्र श्रद्धालु आगामी 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्जर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं, अगर तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम की टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहे तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्चि में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्चि में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम

कोशिश करते रहते हैं। माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नजारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियां, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थी और फिजाएं थी, और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक

श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है। कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे। भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए, जो जब बड़े बड़े बाग होते थे गांव में, अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या डेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे, जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2 2 4 बताइए किसकी है आवाज, किसका है संगीत और किसका है गीत।

0: दो दूनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार है और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी है। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहां एक खाने पीने की चीजें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहां तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर जब पैरों में पॉलिथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा, तो साफ सफाई का ख्याल भी रखें। फिलहाल सुने ये गाना।
1: ये रातें, ये मौसम।

आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनू उड़ती फिरू ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो है, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ है, गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: प्यार करो पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसर जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहाँ पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थी जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहाँ खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फेरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमें संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छांव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है, एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़, इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए के प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गारे में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं दिल कहे, दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु,

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

0: बाजे।
1: अपनी एक और कविता में अंतिम पंक्ति में वंदे मातरम शब्दों के साथ वे लिखते हैं, भैया देश का ये क्या हाल, खाक मिट्टी और जौहर होती सब, जौहर है जंजाल, बोलो वंदे मातरम।

0: अधिवेशन विस्फोटक होगा, इसका अंदाजा लगते ही बंगाल के गवर्नर फुलर ने इस अधिवेशन को दबा देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू की। सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने और वंदे मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं।

0: है, सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहाँ के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
1: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है, ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
2: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्थे भीड़ पर हमला कर दिया।

इस हमले के लिए फुलर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुलर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।

0: लाठी चार्ज थे फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहू लुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठी चार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
1: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।
0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
2: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।
3: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार

अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और न्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास

0: किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: डिटेल्ड असेसमेंट,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र

0: बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झुलमुख दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
5: लोकल फॉर भोपाल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और

0: कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। साहिल

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़ई बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है।

0: इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, हिसार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रहे हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रहे हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन उस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मेरे मूवी का नाम है इज्जत और गानी की बोल है, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छुपी रही है।
0: अच्छा, अरे वाह बड़ी अच्छा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हूँ। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो उनकी याद में गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

बैठे

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं अब गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो आप

0: बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
0: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाता है।
1: अच्छा,
0: तो रात को आता है 9 बजे, सुबह छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
1: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: कसम क्या, कसम क्या होती है, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: आप बताइए कौन बोल रही है और कौन से शहर?
2: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
1: अच्छा, रेखा जी बोल रही है उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
2: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
1: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की मेरी और एक बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
1: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी है ना?
2: मैं अभी 2-3 महीने हुए।
1: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
2: नहीं,
1: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
2: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
1: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
2: मैम अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़ा।
1: बिल्कुल, यानी कि

0: आपकी भी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करते
1: जी,
0: हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवार हैं ना उनको घर बनाती हैं। चलिए,
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। तो
1: वो तो
0: आपकी
1: संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे पहले,
0: बिल्कुल
1: सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन
0: बिल्कुल
1: संभालेगा।
0: बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: तो सबसे पहले तो मेरा तो शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, जमाइन से चालू होता, भूले बिसरी संगीत सविता, भूले बिसरी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, और किचन में चलता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है
1: और
0: ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे और बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए गमलों में। सब में सबसे
0: अरे वाह।
1: ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी
1: हाँ,
0: बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही
1: मेरा
0: हैं।
1: पिया जो जबलपुर का है, तो
0: जी
1: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलिया, इतने पौधे में पेड़ में मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो हमारी हमारी जीवन देते हैं जवाब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी जादू टाइट पान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितने छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती, पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, अगर आपके पास थोड़ा

0: सा टाइम
1: मुझे
0: बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब अभी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी

0: रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी
1: जी
0: परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस,
0: बिल्कुल
1: ऐसी
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ फिट भी रहते हैं बहुत
0: जी। तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ,
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ, रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़े गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके। जी
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा भी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जो
0: बिल्कुल।
1: है,
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है, छोटी
0: बहुत बढ़िया।
1: सी।
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से तो बताइए जी,
1: जी
0: तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।

0: अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हुए, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से वो दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है। वही तो हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना।
1: बिल्कुल आते हैं, सब खेलती हैं,
0: जब वो चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं।
1: जी।
0: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाती हैं आपको ये, आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी। तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निकोत है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बरोड़ा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रहे हैं। तो बताइए आप क्या करते हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकर सुनने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाती हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटियां हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी से लेकर मेरी फोन लगी है। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो बर्थडे के गीत सुनाई देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माई तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर लेती।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती है, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल की बात दे।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत। Thank you.

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूँ बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई है शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती है तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि

मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने, क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे, इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाह ही कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो, नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिय, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती है कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई इनकी दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

से देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके

जुदा न हो, मेरी क्या खता है, होता है ये भी के जमी से भी कभी

गए हो जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया के जहां

बुझा तुम भी थे खोए खोए मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना अपना कोई न था था अजनबी जमाना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठी गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सके। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना?

भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ। आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी। भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे। अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: हिम्मतों भरी कहानी।
1: इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारी प्रस्तुति, आपका फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम हेलो हिसार।

कार्यक्रम हेलो हिसार में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आज के दिन यदि हर एक इंसान इस धरती पर हर एक इंसान सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेवारी समझ ले तो शायद हम कुछ सालों के अंदर ही इस धरती का, इस पृथ्वी ग्रह का कायाकल्प कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने हिस्से का सिर्फ एक पेड़ लगाइए और जो भी आपके संपर्क में है, आपके परिवार में है, उन्हें समझाइए कि उन्हें कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए इस जिंदगी में। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही सालों में

शायद हम कुछ सालों के अंदर ही इस धरती का, इस पृथ्वी ग्रह का कायाकल्प कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने हिस्से का सिर्फ एक पेड़ लगाइए और जो भी आपके संपर्क में है, आपके परिवार में है, उन्हें समझाइए कि उन्हें कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए इस जिंदगी में। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही सालों में

0: करेंगे आज कार्यक्रम में।
1: सर आज मेरे को गीत सुना दें, चांदनी फिल्म जीता जी, पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने कैसी ये आग लगाई।
0: सुखदेव जी आपका गीत आपको पहुंचा रहे हैं, सुनिएगा।

0: जाई
1: सार?
2: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया है भैया, अच्छा है
1: जी। बताइए क्या सुनेंगे आज?
2: आज हम इस सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
1: ठीक है, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहे हैं।
0: जगदीश जी, स्वागत है आपका।
1: आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं सर।
0: तो पालमपुर में कैसा मौसम कर रखा है आपने आजकल?
1: पालमपुर में तो बहुत ही खुशगवार मौसम चल रहा है सर।
0: क्या बात है,
1: आनंद ही आनंद है।
0: ये जो आपने बोला ना, बहुत ही खुशगवार, इसी से ठंडक आ गई है वहाँ की थोड़ी सी हम तक।
1: ठंड कैसी है कि पंखा तो अभी चलाने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से मोटे कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है।
0: यहाँ देखिए, हम तो पिछले 2 महीने से एसी की हवा में जी रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि पंखा चलाने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल सर, कभी पंखा थोड़ा बहुत कभी चलाना पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो पंखे की जरूरत पड़ती नहीं है।
0: तो जब भी मौका मिले थोड़ी ठंडक भेज दिया कीजिए यहाँ पर।
1: बिल्कुल, पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर।
0: बताइए क्या सुनाऊं आपको।
1: सर जी, आज फिल्म है जब याद किसी की आती है,
0: जी
1: महेंद्र कपूर जी का गाया, बहुत ही सुमधुर सा गीत है, तो उसके बोल मैं थोड़ा सा तरन में बताना चाहूंगा।
0: जी प्लीज।
1: अरे ओ शोक कलियो मुस्कुरा देना, वो जब आए सुनो फूलो महक अपनी लुटा देना, वो जब आए।

0: नाम हीरा वाली फाजिलका, पंजाब से नीमे श्रोता सुभाष गुजारा।
1: कैसे हैं सुभाष गुजारा जी?
0: बढ़िया सर जी, बढ़िया। और इसार के प्रोग्राम तो इन दिनों में पूरे छाए हुए हैं जी, और श्रोता गण भी रात की सभा में जो व्हाट्सएप पर प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमारी समझ लो मनपसंद और जुर्स के हिसाब से चलाए हैं।
1: बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपको पसंद आ रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो कार्यक्रम करते
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे मंगलवार को ई फरमाइश सुनते हैं और व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने हुआ, हेलो ये इशार हुआ, और खेती से संबंधित प्रोग्राम हुए, युवानी में हुए, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम जी, बड़े दूर दूर से श्रोता तो जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बेहद शुक्रिया आपका। बताइए आज क्या सुनेंगे?
0: सर जी पहले मैं नाम लेता हूँ, मेरे साथ मेरी घरवाली बिमला देवी, बच्चे हिंदू वाला पार्वती देवी, लड़का हिमांशु, सरवन रेणुआ जी भी साथ है
1: जी।
0: आज मेरे को सुनना था प्रदेश फिल्म का गीत।
1: गाने के बोल बताइएगा।
0: गाने के बोल है जी, नहीं होना था हो गया है मुझे प्यार।
1: ठीक है सुभाष जी, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए फिल्म परदेश का ये गाना।

0: हेलो हिसार,
1: मैं जयवीर प्रजापत बोल रहा जी, गाँव थाना।
0: कैसे हैं जयवीर जी?
1: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाओ जी भाई साहब।
0: बिल्कुल ठीक है जी, क्या करते हैं कुछ बताइए अपने बारे में।
1: भाई साहब, हम तो अपना आकाशवाणी सुनते रहो।
0: बहुत बढ़िया, इस तो बढ़िया, और क्या उसका है जी,
1: आकाशवाणी परिवार सब ठीक ठाक भाई साहब?
0: सब आनंद मंगल है। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज वीर दुर्गादास फिल्म का नाम है, गाने के बोले थाने काजलियो बना लू, थाने काजलियो बना लू, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में जी।
0: ठीक है जयवीर जी, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: हेलो भाई सर,
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन तो बहुत ही पवित्र नगरी है, कुछ बताइए उज्जैन के बारे में।
1: जी बिल्कुल, बताओ। बाबा महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, साथ में शिप्रा नदी के किनारे आपको मंगलनाथ के मंदिर मिलेंगे, भोले बाबा के साथ में हर सिद्धि माँ का मंदिर बना हुआ है। इस साइड में माँ हर सिद्धि का मंदिर है, उस साइड में महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद में आपको महाकालेश्वर बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं और माँ हर सिद्धि माँ के भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसे मतलब आपको बताऊं सर, बहुत सारे मंदिर।

0: बनाए गए हैं यहाँ पे।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सौभाग्य है आपके कि आप इतनी सुंदर और पवित्र नगरी में रहते हैं। बताइए।
0: और जैसे कि आपको बताऊं कि अभी 2028 में महाकालेश्वर बाबा के दरबार में सिंहस्थ का मेला लगाया जाएगा ना,
1: जी
0: तो उसके लिए अभी से मतलब काफी तैयारियां कर दी गई, जैसे कि रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं,
1: हाँ
0: रेलवे
1: हाँ
0: स्टेशन
1: हाँ
0: पे पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, इसके अलावा एरोप्लेन से आने के लिए भी मतलब यात्रियों के लिए सुविधा कर दी गई है यहाँ
1: जी हाँ,
0: पे।
1: इस बार कुंभ जो है वो उज्जैन में होने वाला है।
0: जी हाँ, 2028 में महाकुंभ लगेगा अभी उज्जैन में।
1: जी, तो बताइए प्रेम जी, कौन सा गीत सुनाऊँ आपको मैं?
0: जी सर, मुझे महाकालेश्वर बाबा के उपलक्ष्य में आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी भक्ति रचना चुनवा दीजिएगा जो मतलब भोले बाबा पर फिल्माई गई हो।

0: हेलो हिसार
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं सर आप?
1: बहुत अच्छी तरह से आपकी दुआ इस कृपा से।
0: और बताइए, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है आजकल?
1: इस समय खेती में मूंग की कटाई शुरू हो गई है। मेरे यहाँ मूंग की फसल थी, कटाई हो रही है अभी और मौसम स्वच्छ है आज बिल्कुल।
0: ऐसा माना जाता है जैसे जो हरियाणा पंजाब में कि एमपी का गेहूं, एमपी

0: की मूंग बहुत अच्छी होती है, क्या खास करते हैं आप मध्य प्रदेश में अपनी फसलों को बोने के लिए या उनकी अच्छी पैदावार के लिए?
1: सर जी, आकाशवाणी से जानकारी मिलती है उसी अनुसार हम काम करते हैं। खेत कृषक हम खेतों में जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, जैविक विधि से अन्न उगाते, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हैं और सही समय पे पानी देते हैं, प्रमाणित बीज लाते हैं, मिट्टी परीक्षण भी कराते हैं।
0: बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हैं ये बात कि हरियाणा और पंजाब में एमपी की गेहूं और एमपी की मूंग का बहुत बोलबाला है, क्या मालूम है आपको ये बात?
1: नहीं सर, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा पंजाब भी तो गेहूं में बहुत आगे, पूरे देश में सबसे आगे हैं।
0: नहीं पता नहीं क्या बात है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा पंजाब में जो एमपी की गेहूं है उसकी बहुत मांग रहती है और वो काफी महंगी बिकती है यहाँ पर।
1: हाँ वो सर गेहूँ वेराइटी अलग है, सरबती गेहूँ पे विदिशा होशंगाबाद साइड में होता है, उसकी
0: तो
1: कीमत दुगनी होती है। सर
0: बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं को, आपको आकाशवाणी परिवार को पर्यावरण दिवस की बधाई हो। फिल्म का नाम है हमराज,
0: जी गाने केवल बताइएगा,
1: नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है, आपको सुनवा रहे हैं हरिविलास जी, फिल्म हमराज का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: आपका शुभ बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बंधु।

0: कैसे हैं आप?
1: अरे मस्त हूँ, आनंद में हूँ कि मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में जीवन यापन सुचारू रूप से चल रहा है भैया
0: क्या
1: जी।
0: करते हैं आप?
1: मैं तो अभी रिटायर हूँ,
0: अच्छा
1: मेरी
0: अच्छा
1: उम्र 84 इज रनिंग नाउ, 84 साल चालू है।
0: अरे क्या
1: मगर
0: बात है,
1: बचपन से थोड़ा सा संगीत और गीतों का सुनना ये मेरा हॉबी है और आज तक वो मुकर रहे भाई साहब।
0: तो आकाशवाणी हिसार कैसे सुनते हैं आप?
1: ये तो मैं 1952 से रेडियो सिलोन पे जब बिना का गीत माला आता था
0: जी
1: तब से मैं जुड़ा हूँ। मगर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने विविध भारती की नरेंद्र शर्मा जी के निर्देशन पर स्थापना की और तब से 1957 के बाद विविध भारती पर फिल्मी गीतों का प्रसारण चालू हुआ और मैं विविध आकाशवाणी केंद्रों से संवाद कर अपना गीत और अपने विचारों का आदान प्रदान करता हूँ भैया जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज कार्यक्रम हेलो हिसार में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिन हमने मनाया है।
0: जी
1: आज हमारे देश में पेड़ों की कटाई और जो एक नदी तालाब पहाड़ों का जो उसके ऊपर उत्खनन हो रहा है उससे पर्यावरण बिगड़ रहा है,
0: बेशक,
1: ये चीजें हमें रोकना चाहिए और जिससे प्रदूषण भी कम हो सकता है। विषय को देखते हुए सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
0: फिल्म
1: ये गीत
0: मधुमति,
1: सुनना चाहूंगा बंधु।
0: फिल्म मधुमति से।
1: हाँ, मधुमती दिलीप कुमार जी और वैजयंती माला जी के ऊपर यह फिल्म निर्मित की गई थी, बचपन में देखा था, तो
0: जी
1: यह गीत सुनाने का अनुरोध करना चाहूंगा।
0: सुनिएगा आपकी पसंद पर फिल्म मधुमति का ये गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद साहब।

0: तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम हेलो हिसार का इस हफ्ते का पहला भाग। दूसरे भाग के साथ आपको फिर मिलूंगा रविवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अर्ज किया है रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
3: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
4: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
3: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
4: हर मंगलवार शाम 5 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: नया बेहतर है
6: क्योंकि तुम ही हो
3: किंतु पुराना बेहतरीन।
7: दिल चीज क्या है?
4: नया श्रेष्ठ है
6: केसरिया तेरा
3: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।

0: उत्कृष्ट है।
1: तेरी गलियां
2: किंतु पुराना अनमोल
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल
0: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। अभी आप सुन रहे थे आपका अपना फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम हेलो हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। देश के हर कोने से आती है ये आवाज हेलो। आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन जी हाँ हेलो हिसार आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662 297827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन? रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 बजे और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5 बजे। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10 बजे। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रात 10 से 11 आप सुन सकेंगे प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें आप अपने गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर याद रखिएगा 9729253272।

बिजली हर शक्ति से व्यर्थ ना गवाओ, जितनी जरूरत हो उतनी चलाओ। जन जन को वृक्ष लगाना है, पर्यावरण बचाना है।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद सुनेंगे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष

0: पानी पूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल के प्रसारणों के बारे में अवगत करा दें। पहले बात आज के प्रसारणों की। आज 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। भक्ति संगीत कार्यक्रम प्रसारित करेंगे 6:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग आप सुन सकेंगे 6:30। 7 सुनेगा कार्यक्रम खेती किसाना सेती। आज 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आधारित विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का 5वां भाग आप सुनेंगे। 7:30 सुनेगा हमारे गांव में हरियाणवी लोकगीत। 8 का समय रहेगा पंजाबी लोकगीतों का। 8:30 खुलाकाश के अंतर्गत हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। राष्ट्रीय हिंदी समाचार 8:45 पर होंगे। 9 अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे विविध भारती से। 9 से 10 तक विविध भारती के प्रसारणों का आनंद लीजिएगा। 10 हम आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। और सभा के अंत में 11:00 सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

और अब कल के प्रसारणों पर एक नजर। कल की सभा का आगाज होगा 5:55 पर। 6 बजे वंदन वार कार्यक्रम सुनेगा। 6:45 पर कार्यक्रम रूपरेखा की जानकारी हम आपको देंगे। संस्कृत समाचार 6:55 पर। 7 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर लोकरंग कार्यक्रम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुप्रभात कार्यक्रम 7:40 पर आप सुनेंगे। 8:30 बजे से विविध भारती के प्रसारणों का आनंद लीजिएगा। नमस्ते हिसार ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे कल भी 10 बजे। 11 बजे विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 1 बजे तक। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार होंगे। 2 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार प्रसारित हम करेंगे। 3 बजे विविध भारती से सुनेगा सखी सहेली और 5 बजे संदेश आपके गीत हमारे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। छह बजे हिंदी समाचार, 6:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। 6:20 पर रोज की तरह सुनिएगा भक्ति संगीत। 6:30 बजे का वक्त रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी के अगले भाग का। 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा। 7:30 बजे हमारे गांव। 8 बजे सुनिएगा शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। 8:30 बजे खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म से कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। रात्रि 8:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। 9 बजे विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे रात 10 बजे तक। 10 बजे सुनेगा आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो हिसार, जिसका हम पुनर्प्रसारण करेंगे।

रात्रि 11 बजे सुनेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 11:10 पर सुनेगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आधारित विशेष कार्यक्रम का पांचवा भाग आप सुन सकेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए सुनिए अब से थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण और पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की। हरियाणा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 1,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, कृषि व्यापार, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2738 करोड़ रुपए की लागत से जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा कृषि व्यापार एवं कोल्ड चेन केंद्र का शिलान्यास करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा की धरती पर दो ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण सरकार की प्राथमिकता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य में 23 नए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 780 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण की घोषणा भी की।
1: मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। पीपली कुरुक्षेत्र में जो चिड़ियाघर है उसका नवीनीकरण किया जाएगा 70 करोड़ रुपए की लागत से, और इसी प्रकार भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार सरस्वती संरक्षण वन में प्रवासी पक्षियों के लाभ हेतु पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: कालेश्वर में जो राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म तथा वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके मूलभूत साथियों सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास पक्षी अभयारण्य तथा कोटला झील 9 को शामिल करके पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट का

0: किया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 1,50,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा।
0: इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,50,00,000 पौधे एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसमें 50,00,000 पौधे वो मुफ्त वितरित किए जायेंगे। साथियों, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ, वन विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु उपयोग में लाए गए साथियों प्लास्टिक बैग को बायो डिग्रेडेबल बैग से बदला जाएगा। पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20,00,000 पौधे वितरित किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया।
2: श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 102 में मटेरियल रिकवरी सुविधा और गुरुग्राम नगर निगम द्वारा शहर के 170 पार्कों तक शोधित अपशिष्ट जल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान श्री मनोहर लाल, राव नरबीर सिंह व स्थानीय नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
2: विशिष्ट अतिथि राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वृक्षारोपण की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान पारिस्थितिकीय, सजावटी एवं औषधीय महत्व रखने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। हरियाणा का 23वां जिला बनने के बाद आज हांसी में पहली बार शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। बैठक में रखे गए 10 मामलों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रखे गए मामलों में कुछ पारिवारिक व घरेलू थे और एक दो विकास से संबंधित थे। हांसी जिले के विकास को लेकर उन्होंने कहा,
3: अभी हांसी में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वास्तव में जिला हेडक्वार्टर पर जिस जिस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं पर विधायक आदरणीय विनोद बैना जी से लगे हुए हैं। सेक्टर कहाँ पे बनना, मर्सिल कहाँ पे बननी है, कोर्ट के लिए जगह, ये सब चीजों को लेके कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सारी व्यवस्था में विधायक जी ने अपनी प्रपोजल सरकार को दिए।
1: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों मंडलों के 225 बूथों के बूथ अध्यक्षों बीएलओ 1 और बीएलए 2 की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियम अनुसार हटाया जाना चाहिए।

0: पार्टियों की जिम्मेवारी बढ़ती है और सभी पार्टियां अपने अपने बीएलए 2 के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, बीएलए 1 के माध्यम से वोटर सूची के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो एक्चुअल मतदाता है, जो जहां पर वोट पोल करेगा वहीं पर ही उसकी वोट हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
1: मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

ईश्वर की अनुकंपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है। उस प्रभु का सुमिरन हमारी सारी दुविधाओं को दूर कर देता है, हमारे मन में ज्ञान के प्रकाश को आलोकित कर देता है। तो आइए करें उस प्रभु की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मीराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
0: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को

0: स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी।
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
4: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?

0: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो?
3: मुझे भी नकली मिला। मुझे भी कैसे हो सकता है?
2: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: कैसे हो सकता है?
2: आया था
3: राजा नकली ही रहते सकता?
2: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए। मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जोहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ प्री स्कूल।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

0: संदीप भाई राम राम।
1: रणिता बाण आपने भी राम राम और खेती किसाना खेती सुनाले सारे बन भाई ने
0: राम राम। संदीप भाई अपने आकाशवाणी के माध्यम से या फिर जो अपने कृषि वैज्ञानिक आवे हैं बार बार आप उनसे भी पूछा हाँ आप भी अपने किसान भाइयों ने बताते रहो हाँ कि जो रासायनिक खाद है उनका या रासायनिक जो दवा हम ज्यादा डाल रहे अपनी खेती बाड़ी में फसल के ऊपर उसका कम प्रयोग करके जैविक खेती की तरफ मुड़ा जैविक खाद डाला प्राकृतिक खेती करा तो आप ज्ञान तो बांट दिया हाँ। लेकिन अपने किसान भाई पूरे ज्ञानी है जब इतने साल पीढ़ी दर जब खेती करते जा भाई वैज्ञानिक तो वह भी बन रहे हैं पूरे तो लेकिन जब हम आपस में बैठ के बात करा हाँ तो आप करा कि जो रासायनिक खाद या दवाइयों का ज्यादा प्रयोग करके आप जो फसल ने नुकसान पहुंचा फिर अपने स्वास्थ्य ने नुकसान पहुंचा लगा तो जैविक खाद किस तरह बना है क्या तो बना है यो भी तो अपन समझा करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और अनिता बान देखो खेत आजकल अपने खाली पड़े हैं
0: हाँ
1: तो इसके लिए जो अब उचित समय है कि जो केचुआ खाद है वो भाई अपने बना सके हैं तो जहाँ भी छायादार जगह मिले तो वहाँ पर जो किसान भाई हैं वो अपने गोबर और जो जैविक कचरे की परतें बना के उसमें आइसिनिया फेडिया भाई एक बार फिर बता दें हाँ आइसिनिया फेडिया
0: अच्छा
1: ये जो प्रजाति है ये अपने केचुए की प्रजाति है भाई और 60 से 70 दिन में जो है इससे अपनी केचुआ खाद जो है वो तैयार हो जावे।
0: अच्छा एक और बात है अपने जो किसान भाई हैं या अपनी जो ग्रामीण महिला है अपना गामा में देखा अपना करोड़ी बन जाए उनमें भाई भाई केचुए चलन लग जाए तो क्यों मिलता जुलता मन तो ऐसा ऐसा लग गया क्योंकि जो अपन यह खाद बनाना है यो बड़ा जैविक है जैविक कचरा तो बनाया चाहे वो गोबर हो चाहे पत्ते पाते हो चाहे अपनी सब्जी गली सड़ी हो उस तो बन जाए तो या जो केचुआ है खाद है यो बड़ा ही अपनी जो खेती बाड़ी है ना उस खातर बड़ा ही पोषक तत्व तो देने वाला है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: और अनिता बाण आपने कुडी की बात करी तो भाई जो गोबर का प्रयोग जो आपने करना है खेचुआ खाद में तो लगभग जो है 15 से 20 दिन देखो अनिता बाण अपना पुराना आधा सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए क्योंकि अगर आपने ज्यादा ताजा गोबर का या गर्म गोबर का आपने प्रयोग कर लिया तो जो अपने केचुए हैं वो मर जाओगे और जो आपने खाद बनानी है वो आप पूरी नहीं बन पाओगी।
0: अच्छा आपने बात करी थी बताओ थे आप केचुआ का नाम भी बताया था अपना एक दो प्रजाति वह बढ़िया रहेंगे इसमें।
1: बिल्कुल। और आपने बात केचुआ की कर दी है तो आइसिनिया फेटिडा आप फिर से बता दें वहां किसान भाइयों ने जो लाल केचुए या नीताबान जिन्हें
0: अच्छा
1: किसान भाई आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं तो वह जो केचुए हैं इसके लिए सबसे बढ़िया रहे हैं और जो प्रति 1 मीटर का जो बेड है उसके लगी ये लगभग नीताबान आपने 1 किलो केचुए की आवश्यकता पड़े है।
0: अच्छा तो भाई स्थान का भी है देखो जब आपा जब खेचुआ खाद बनाने चल पड़ा है तो आपा ननु भी देखना पड़ेगा क्यूकर बनाना है किस तरह बनाना किस जगह बना तो भाई इसी जगह देख ले या तो छायादार जगह हो पेड़ का नीचे हो या अपना कोई शेड शेड बना रखे हो तो उसमें क्या करा है 3 फीट चौड़ी और अपने सुविधा अनुसार एक लंबी सी क्यारी बना ले तो आपने बेड की बात करी थी तो गड्ढा सा बना ले उसमें तैयार करके क्या करा है जो क्यारी की तली है उसमें सब नीचे क्या करा सूखी पत्ती या जो भूसा जो आप लोगे उसमें लगभग 3 इंच की परत लगातार उसमें बिछा दे फिर क्या करे उसके ऊपर गोबर की परत 15 से 20 दिन आपने बताई थी पुराना गोबर होना चाहिए मतलब नया ना हो नया में भाई कीड़े लगन का ज्यादा अंदेशा रहा है तो पुराना गोबर होगा उतना ही बढ़िया होगा जैविक खाद बनाने खातर तो या फिर और कोई जैविक कचरा है गला सड़ा है सब्जी गली सड़ी है अपने पेड़ पौधे के पत्ते पाते हैं उन्हें इकट्ठा करके उसमें डाल दे और अच्छी तरह उसने पानी में मिलाकर गीला कर ले और फिर आपने बात करी कि केचुए हैं तो इसमें आपने बताई थी कि 1 किलो तो उस हिसाब से 1 किलो केचुआ प्रति एकड़ वर्ग फिट के साथ उसमें बिछा दे।
1: बिल्कुल। और जैसे जैसे गोबर की परत बिछाने के बाद उसके ऊपर केचुओ को आप ने बराबर बराबर छोड़ना है भाई यूं नहीं है भाई किसी एक कोने में आप ने ज्यादा छोड़ दिए बीच में आप ने कम कर दिया तो आप ने उनको बराबर फैला के रखना है और बिल्कुल आराम से रखना है भाई उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो और केचुओ को छोड़ने के बाद जो आप ने बेड तैयार कराया उसको टाट की बोरी हो भाई पराली है इससे ढक दे और जो नमी है नीतावन उसका आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है 70% तो आपने नमी उसमें बना के रखनी है और हर रोज जो है उसमें आपने पानी का छिड़काव जो है लगातार करते रहना है क्योंकि जो केचुए हैं अपने उनमें अंधेरा और नमी दोनों पसंद है तो देखो धूप बहुत ज्यादा पड़ने लग रही है तो ढकने आपने बहुत जरूरी है ताकि नमी भी बनी रहे और अंधेरा भी बना रहे और साथ में आपने बताई सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो छायादार जगह है हमने वहां पर अपनी केचुआ खाद तैयार करनी है, और जब नितावन 50 से 60 दिन 2 महीने मान लो आप,
0: हाँ,
1: 2 महीने हो जाओ, तो जो सबसे ऊपर जो आप ने परत है वह जो है चाय की पत्ती नहीं आया करेंगे,
0: अच्छा अच्छा
1: उस जैसी काली काली और भुरभुरी दिखने लाई जाओ, तो खाद निकालने में 5 से 6 दिन पहले नितावन आप ने जो आप पानी का जो छिड़काव करने लग रहे हैं वो आप ने बंद कर देना।
0: ठीक भाई, मतलब उस दो एक महीने पाछे आपने यो जो जो आपने चाय पत्ते की दानेदार सा वो खाद सा बताया वो उसमें बदलन लग जाएगा। फिर के करना भाई, खाद तैयार होने के बाद 5-6 दिन पहले पानी देना आपने बंद करना पड़ेगा, और जब नमी खत्म होने लग जाए तो केचुए नीचे की स्तर पर चले जाएंगे, और इसके बाद आप जो ऊपर खाद तैयार हो गया है उसने आप केचुआ तो अलग कर ले और छान ले, तो यो जो खाद बनकर तैयार हो गया है तो यो अपने खेती खातिर बहुत बढ़िया है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास जिसे जो मुख्य पोषक तत्व अपन चाहिए ना वह उसमें मिल जाए हैं, और जो अपनी भूमि का जल धारण की जो क्षमता है उसमें वो भी बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, और एक चीज आपने ध्यान रखनी है नितावन, देखो जो केचुए हैं जो आप मोल लेके आए हैं, तो खाद इकट्ठा करते समय आपने उनको नष्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जो भुरभुरी खाद है तो
0: अच्छा,
1: आपने हाथों से जो है धीरे धीरे परत दर परत हटा के इकट्ठी करनी है। भाई मैं कई बार सोचते हैं भाई हम खुरपा तक फावड़ा तक ठीक कर ले जल्दी हो जाओ, तो उस तरह की लापरवाही आप इन्हें बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे, और अगर कोई भाई ऐसे हैं नितावन जो स्वरोजगार की तलाश करने लग रहे हैं, तो वो भी केचुआ खाद बना के नहीं, इसमें तैयार जो खाद है उसको अपने कट्टे में भर के या पोलोथिन में 2 किलो 5 किलो की पैकिंग करके नर्सरियों पर बेच के भी इसने स्वरोजगार का माध्यम के रूप में भी अपना सके,
0: अच्छी कमाई कर। संदीप भाई एक बात तो है, अपन बात कर ली कि जैविक केचुआ खाद कौन सी होगा, क्यों कर बनाई जाए और उसके कौन कौन से लाभ, लेकिन फिर भी कई जो भ्रांति और कोई बात चलती रहे हैं कि इस फसल बढ़िया नहीं होगी या इसमें खाद बढ़िया नहीं मिलेगा या जो प्रति एकड़ दर है वह कम हो जाएगी, कि यह भी हो सका है कि संदीप भाई?
1: बिल्कुल ऐसा नहीं है नितावन, या केवल केचुआ खाद पे को नहीं, कई भाइया के मन में भी भाई ये जैविक खेती की बात करते रहे हैं
0: या सह के
1: भैया किस प्रकार से हुआ है, तो यह वह खेती है जिसमें बिना हम कोई रासायनिक खाद डाले प्राकृतिक चीजों से खेती करा है। और नितावन इसके पीछे कई मन में भी कई चीज रहे है भाई, अगर हम बिना रासायनिक खाद डाले खेती करांगे तो कहीं अपना उत्पादन कम नहीं हो जाए होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यदि हम बिल्कुल अच्छे वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करांगे तो कोई ऐसी संभावना नहीं है कि अपना जो उत्पादन कम होगा, बल्कि जो जैविक खेती से थोड़ा बहुत यदि उत्पादन कम भी हो जाओ तो नितावन उसका जो है आप ही बाजार में आप जो उत्पादन आप ही चीज का करांगे उसका मूल्य भी बढ़िया मिले,
0: तो उसमें जो कम मात्रा में होगी तो मूल्य बढ़िया लेके भाई आमदनी उतनी बराबर बराबर के मन लगा उस तो भी घनी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो अपनी बागवानी की जो अपन खेती करी है, किसी भाई ने आम का ला रखा, अमरूद का ला रखा है, बाग तरह तरह के कितने बेरा के हैं, तो उसमें जो अपन जैविक खाद की बात करी ना, रासायनिक खाद की बजाय ये जैविक खेती, तो उसमें भाई शून्य पशु आगा जैसा काम करा है, क्योंकि उसकी फसलों में बहुत बढ़िया परिणाम देवा है। अपना जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है अगर उसकी बात आप मानना है, तो हरित क्रांति जो है जो हरियाणा में पिछले कई वर्षों तक जो अपनी खेती बाड़ी की जो पैदावार स्थिर रही है वो जैविक खाद आप डाला उसके कारण हो रही है।
1: बिल्कुल, और देखो नितावन आप इन्हें धीरे धीरे जो है इसमें परिवर्तन करना है, क्योंकि अचानक से हम यदि परिवर्तन कर देवांगे भाई, अचानक से हम रासायनिक से पूरा जैविक में लग जाएंगे तो थोड़ा सा पैदावार में फर्क आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके आप रासायनिक जो खेती करना रहे हैं उसने कम करके जैविक खेती की तरफ बढ़ते चला, ताकि जो अपना फसल का उत्पादन है वो भी कम ना हो और किसान भाई के नुकसान भी ना हो।
0: हाँ, इस तरह अपनी जो खेती बाड़ी भी बढ़िया होगी और अपनी जो कुल लागत है वह कम लगेगी और बड़ी आमदनी हो जाएगी। और बात है अपने जो कीट नियंत्रण है उन पर भी अपना वो जगह की आप पूरा नियंत्रण कर पाओगे, तो आप सिर्फ रासायनिक खाद पर आत्मनिर्भर ना रहकर भाई जैविक खाद की तरफ जब मुड़ांगे तो बहुत बड़ी अपनी जो धरती की उपजाऊ शक्ति है वह भी बढ़ जाएगी, अपनी धरती में पोषक तत्व तो भी बढ़िया मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, और देखो नितावान किसान भाई अपने जागरूक है और आधुनिक समय देखो चलन लग रहा है, आप दूर क्यों जाओ, गेहूं का जो आप देखा पूरा साल जो है हर व्यक्ति जो है रोटी बनाने में गेहूं का प्रयोग करे है, और जैविक जो भाई अपने पैदावार लेने लग रहा है उसमें मूल्य भी बाजार में बढ़िया मिले है। और इसी के साथ अनिता बन कार्यक्रम खेती किसाना से ती का समय समाप्त। अब अपने भाई संदीप ने
0: और अपनी बन अनिता ने दे इजाजत, सारे बन भाइया ने राम राम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सिद्धि, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद सुनिए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आधारित विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का 5वां भाग, अब से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं हरियाणवी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोकगीत एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, गीत संगीत हमें अलग ही दुनिया में ले जाता है, और बात हो जब पंजाबी गीतों की तो अनूठा उत्साह और उमंगों भरे होते हैं पंजाबी गीत। तो आइए इसी उमंगों भरे कार्यक्रम में चलते हैं और सुनते हैं पंजाबी गीत।

पंजाबी लोकगीत जो कभी माँ की लोरी बनकर सुला देते हैं, कभी ढोल की थाप पर नचाने लगते हैं और कभी हीर रांझा की कहानी में दिल की गहराई तक उतर जाते हैं। ये गीत सिर्फ गाने नहीं होते, ये पंजाब की आत्मा होते हैं। खेतों की हरियाली, बोली की मिठास और लोगों की सच्ची भावनाएं।

बिल्कुल, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए ताकि जिंदगी और खूबसूरत हो सके। दोस्तों, पंजाबी लोकगीत वो आईना है जिनमें हंसी भी है, दर्द भी, इंतजार भी है और जिंदगी का पूरा रंग भी। तो अगर आप सफर में हैं या घर पर बैठे हैं या आंखें बंद करके रेडियो सुन रहे हैं, बस खुद को इस संगीत के हवाले कर दीजिए।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में शोर बहुत होता है और दिल चुपचाप किसी सादगी को ढूंढ रहा होता है। आज रेडियो पर वही सादगी आई है, पंजाब की मिट्टी से निकली लोकगीतों की शक्ल में। ये वो गीत हैं जो किसी बड़े मंच के लिए नहीं बने, बल्कि आंगन में बैठे लोगों के लिए बने हैं। चूल्हे की आंच के पास, खुले आसमान के नीचे, दिल से दिल तक पहुंचने के लिए। इन गीतों में किसी की प्रतीक्षा है, किसी की विदाई है, कहीं ढोल की थाप पर छलकती खुशी है तो कहीं तन्हाई की एक चुप सी धुन। पंजाबी लोकगीत हमें ये याद दिलाते हैं कि भावनाएं बोलने की मोहताज नहीं होती, बस सही सुर चाहिए।

0: दिन।
1: दोस्तों, आज रेडियो पर गूंज रहे पंजाबी लोकगीत किसी कलाकार की नहीं, पूरी पीढ़ियों की आवाज है। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं होती, बस सच्ची होनी चाहिए। शायद इसीलिए पंजाब के लोकगीत बिना साज सजावट के भी सीधे दिल में उतर जाते हैं।

दोस्तों, उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल को थोड़ा हल्का किया होगा, मन को सुकून दिया होगा और किसी अपनी सी याद को फिर से जगा दिया होगा। रेडियो के इन तरंगों पर हम फिर मिलेंगे कुछ नए एहसास, कुछ नई धुनों के साथ। तब तक के लिए अपनेपन को संभाल कर रखिए, संगीत से जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मनी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है खुला आकाश का। खुला आकाश के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, जिसमें आज हम ले रहे हैं फिल्म अनपढ़। ६२ की हिंदी फिल्म है अनपढ़। इसमें बलराज साहनी, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, शशिकला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। संगीत मदन मोहन का है, गीत रजा मेहंदी अली खान का, और इस फिल्म के खूबसूरत गीतों को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कुमार ने।

दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज अभिनेत्री बिंदु ने इसी फिल्म से अपनी पहली प्रमुख भूमिका की शुरुआत की थी और उनका ये गीत जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया गाना काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म की कहानी महिलाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता और एक महिला के मजबूत स्वाभिमान और त्याग पर केंद्रित थी।

अभी आप सुन रहे थे खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आपने सुने अनपढ़ फिल्म के गीत। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ

के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत

0: करने के इच्छुक हैं। पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है कोहिनूर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी है और संगीतकार

0: रात में दो दो चांद खिले।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। फिल्म अनाड़ी का दो गाने सुनिए, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार हजरत जयपुरी हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था अनाड़ी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत में डाला है खेमचंद प्रकाश ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जिद्दी। इसे प्रेम धवन ने लिखा था और धुन बनाई थी खेमचंद्र प्रकाश ने। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: वित्त भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था।

अक्षर आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर आहूजा। 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मे बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी। तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

साथ उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फिल्म को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थी आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

के बाद आई खूबसूरत एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनून कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

उसके बाद फिल्म मिर्जा आई, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनू ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। मिर्जा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

दीदा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाया।

2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिला

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की श्री के हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिला